0: से हवो करो मेरा दुखा ए उड़त्या ले दे दे ने बाबा ना वाकर दिवा
1: गुरु का सबूर
2: यार हम बाबा